0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। और दोस्तों अगले कार्यक्रम की हमारी पेशकश रहेगी
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरतर।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: समझना चाहिए गाना।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद करना चाहिए गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
4: हाँ माँ,
5: बेटा पापा को हार्ट अटैक आया है।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: बस मजना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: DS समझना चाहिए गाना
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: बस मजना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

दोस्तों अभी हमने सुना भक्ति संगीत के दौरान अनेक भजन रचनाएं। और दोस्तों अब चलते हैं हम पुराने फिल्मी गीतों की ओर। दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार हमारे पास सूचना आई है, आज दिन अगले 3 घंटों के दौरान भरतपुर, करौली, दोशा कुछ अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने की और तेज हवा चलने की, बारिश के साथ साथ आंधी आने की संभावना है। धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: गुलशन।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे गुलशन जी?
2: वो वाला, चूड़िया बनती हैं दुकानों में, जोड़िया ऊपर आसमानों में।
3: क्या?

0: हेलो
1: मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग
1: जी मैम, क्या है आपका?
0: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं, मोनिका।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: हेलो
1: हेलो, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकार।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए मैम।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम अंगीर सलमानी।
1: सर कहाँ से बात कर रहे हो?
0: चूली के डूंगा बुद्धि से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज गाना सुन सकते हैं, फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियाँ, गाने के बोल हैं दिल बेकरार था, दिल बेकरार है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैम, थैंक यू।
1: यू वेलकम।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम अंगीश सलमानी।
1: सर कहाँ से बात कर रहे हो?
0: चूली के डेंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियाँ, गाने के बोल हैं दिल बेकरार था, दिल बेकरार है।
1: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम सोहेल जैसी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
2: राजपुर में, गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: विनोद कुमार सैनी।
2: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगापुर सिटी मऊकला।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: वक्त ने हमसे कैसा लिया इंतहा, नशा मूवी का सॉन्ग है।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: नमस्ते दीदी, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ। कैसे हैं दीदी आप?
1: सर ठीक है, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक है। उधर राजस्थान में मौसम कैसा है दीदी?
1: तो बारिश का मौसम हो रहा है आज तो।
0: हाँ बारिश का मौसम।
1: हाँ सर आज तो थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है ठंडा ठंडा, कुछ दो तीन दिन से हो ही रहा है यहाँ पर।
0: यहाँ भी ऐसा ही हाल है।
1: चलो बढ़िया, थोड़ा गर्मी तो कम होगी, लोग कम पड़ जाएंगे, नहीं तो गर्मी से आधे से तो बेचारे बूढ़े बड़े तो पहले जाएंगे गर्मी से।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बूढ़े बड़ों के लिए तो सर्दी और गर्मी दोनों ही खतरनाक होती है।
1: हाँ सर, आजकल हॉस्पिटलों में भी मैंने देखा था परसों पहले भी, इतने भर रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमारी, कुछ नहीं मलेरिया डेंगू मलेरिया ये जुकाम खांसी वैसे, ये ठंडा पानी पीने से वो ही वायरल, और कुछ नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मौसम का थोड़ा सा इफेक्ट भी रहता है, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी गर्मी तो।
1: हाँ सर,
0: चलिए तो प्रेम पर्वत फिल्म का गीत सुना था दीदी, प्रेम पर्वत।
1: प्रेम पर्वत का?
0: हाँ, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, बता दीजिए आवाज में।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना दीदी, इसमें कुल कर लुकली, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू दीदी, नमस्कार।

0: हेलो
1: मैडम नमस्कार।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: रतन लाल बोल रहा हूँ, महू कला से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कल भी मैडम की मैडम आपने एक ही लाइन सुना दी याद।
0: नहीं सर, कल संडे था इसलिए एक लाइन नहीं, दो दो मिनट के गाने चलते हैं संडे के दिन, लाइव चलता है ना, तो ज्यादा नहीं सुना सकते क्योंकि बहुतों के कॉल आते हैं इसलिए।
1: मैना साहब को?
0: हाँ, उनके पास फोन आया था, उनका कोई जरूरी मीटिंग थी इसलिए वो गए थे।
1: माधोपुर गए होंगे?
0: हाँ सर, माधोपुर ही है आज भी।
1: अच्छा, वो ही सुना देना मैडम, कल सुना नहीं मैंने, मेरे यार सुधा मारे एक ही लाइन सुनाई आपने।
0: सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना, रेजुडियस में कॉल करने के लिए बहुत

0: हेलो
1: आदरणीय दीदी, सर नमस्कार।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं गाने की फरमाइश अवश्य करूंगा, थोड़ा सा मौसम के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि आपके यहाँ कैसा मौसम है अभी।
0: सर मौसम बारिश का हो रहा है अभी। अगले 3 घंटे पे हमारे पास सूचना है कि अगले 3 घंटों के अंदर कुछ राज्यों में बारिश होने वाली है।
1: दीदी हमारे मथुरा में सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक झमाझम बारिश हुई है, मौसम ठंडा हो गया है। अच्छा। अभी खिली खिली धूप है और मंद मंद शीतल पवन प्रवाहित हो रही है। बहुत ही खूबसूरत
0: मौसम। बात है क्या, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है।
1: अनुरोध है
0: और गाने की बोल
1: किशोर कुमार साहब ने गीत गाया है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभी एक साथ से।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हृदय से आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। आभार करते हुए आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम लक्ष्मी है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: ये उगामल बालाजी गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कौन ये? लाखों में मेरी बहना एक।
0: लाखों में मेरी बहना एक।
1: हाँ,
0: इसी नाम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: आओ।
1: हेलो
0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आरती मीना।
1: आरती जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: घर मोरे परदेसिया।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते मैडम।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: रफीक खान, लोगो कॉलोनी, लोगो मस्जिद पीछे।
1: कौन सा गाना सुनना है लोगो सर?
0: मिलते मिलते हसीब आदियों में।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो रंजी, नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लू खेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मुझे सुनना है बहन जी, फिल्म का नाम है बद और बदनाम और गाने के बोल है हमें तुमसे मोहब्बत है हमारा इम्तहान ले लो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: लता मंगेशकर की।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: बाबू खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी। लट को दिल से पानी तरंगम फूट जाएंगे।
0: तो थोड़ा सही बोलो, मुझे समझ में नहीं आता आपका गाना।
1: दोबारा बोलूँगा?
0: हाँ सर, गाना समझ में नहीं आता, गलत लग जाता है।
1: झट को जुल्फ से पानी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।
2: न झट को जुल्फ

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: DS साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:12 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे बलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारे साथ मौसम के विभाग के अनुसार हमारे पास सूचना है, अगले 3 घंटों के अनुसार भरतपुर, धौलपुर और करौली में के कुछ अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ साथ तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश के साथ साथ आंधी आने की संभावना है। आपदा प्रबंध विभाग राजस्थान। धन्यवाद।

0: आपको नाम क्या है आपका?
1: प्रियांश मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जी मैं मलाड़ा डूंगर मानौली से बात कर रहा हूँ।
0: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जी मैं गाना सुनना चाहता हूँ रात भर हीरोपंती मूवी से।
0: रात भरी हीरोपंती मूवी का ना?
1: हाँ सुनिए प्लीज।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: योगी सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? इको एरिया से बात कर रहे हैं।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हीरा मिल गया।
0: क्या?
1: हीरा मिल गया।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सर।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: मेरा खान पुराने निजाम।
1: और कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आइए,
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना लिख लो, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊँ।
1: ओके सर, सुना दो, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, योगेश डांगरे विनय पर छत्ती हुए।
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: फिल्म कोहली से सुनवा देंगे, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कौन से आए आपका?
0: शांत मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: रजी करेलिया।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: देवांशु।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? मुंबई से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: एक खटोला जेल के भीतर।
1: ओके, हमारे आपकी फरमाइश करिएगा।

0: दोस्तों
1: नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: आज सुना है मुझे मुकेश की आवाज में।
0: सर बताइए।
1: कोई भी।
0: ओके सर।
1: आप कभी ड्यूटी चेंज नहीं कर सके कहीं? हाँ, कश्मीर में?
0: नहीं सर।
1: अच्छा, ये वहाँ पे दूसरा है?
0: हाँ सर।
1: धन्यवाद मैडम।
0: ओके।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम, मैं प्रतीति ब्रजमोहन।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैडम को सुना जाओ, मेरे भाई मेरे बंधु बॉर्डर 2 का गाना है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 1:09 का। और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29°C। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नई तरानों के बीचों में बातें करते हैं। दोस्तों वृक्षारोपण को हमने कैसे हमारे घर के आसपास पेड़ पौधों की कैसे सुरक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधों के जरूरी ये होता है कि हमारे दोस्तों हम पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी को कम करते हैं, पर्यावरण संतुलित रखते हैं। अगर पेड़ नहीं हो तो जीवन में भी मुश्किल हो जाता है। वृक्षारोपण कब और कैसे करें? सबसे अच्छे समय में बारिश का मौसम, अपने घर के आसपास खेत या खाली जगहों पर पेड़ लगाएं। पौधों को लगाने समय गड्ढे गहराई का रखें और उसमें खाद मिलाकर। पेड़ों की देखभाल कैसे की जाती है? बरसात के मौसम में हमें पेड़ लगाने के समय रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालें। अगर बरसात ना हो, गर्मी तेज की पड़ी तो हमें बारिश के मौसम में तो हमें पानी नहीं डालना चाहिए, पर गर्मी के मौसम में हमें पेड़ों में पानी डालना जरूरी होता है। पौधों के आसपास साफ सफाई रखें, जानवरों से बचे के लिए छोटी छोटी बाड़ियाँ लगाए, टहनियाँ लगा दी। कौन कौन से पेड़ हमारे लिए जरूरी होते हैं? हमारे लिए वृक्षारोपण के लिए नीम, पीपल, बरगद, आम जैसे बहुत फायदेमंद होते हैं। ये पेड़ हमारे ऑक्सीजन देते हैं और छाया भी प्रदान करते हैं। हमारे छोटे कदमों बड़े बदलाव। दोस्तों अगर हम इंसान साफ सुथरी जगह हम अपने आसपास घर के पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें ही फायदा मिलता है, क्योंकि हमारे पेड़ हमारी छाया देता है, फल देता है और हमारे लिए पर्यावरण की शुद्ध हवा ही देता है। सुनते हैं नए तराने कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 106 पे रेडियो डीएस।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून कनेक्ट 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम भूली बिसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।
0: रेडियो डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।

0: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर, एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
1: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।

वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

वक्त हो चुका है 3:21 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:41 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। पुनः प्रयास करें 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराइए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख ले।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ। एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे थे 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेके आ रही हूँ सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: इश्क तेरा मेरी,
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: रंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: आज गाना सुनना चाहते हैं लुक्का किसी, बहुत हुई सामने आते।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: गुलशन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: खिड़की वाली तू कल फिर आना, ओल्ड सॉन्ग।
0: खिड़की वाली तू फिर कल आना।
1: हाँ,
0: ओल्ड सॉन्ग है ना?
1: हाँ।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।

0: हेलो
1: जी,
0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, फिल्म का नाम है श्याम भारत।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद बहन जी।

0: धन्यवाद बहन जी।
1: यू वेलकम।
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मैडम।
2: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम है सुरन सेठी।
2: कहाँ से बात कर रहे
3: हो? राजपुरे में, गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: रिश्ता तेरा मेरा है सबसे निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परी गाना

0: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आमिर जी से भी।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहो?
0: चलो लिखो
1: सर, बताइए।
0: पलक बंद कर लूँ।
1: पलक बंद कर लूँ?
0: हाँ जी, पलक बंद कर लूँ।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। गाना रेडियो डीएस में कॉल कर

0: हेलो
1: सर, नमस्ते
0: जी। नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं।
1: सर कहाँ से बात कर रहे हो?
0: जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म है।
1: हाँ सर बताइए।
0: आशिकी का
1: गाने के बोल सर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सुनहरी सपेरा
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हो?
1: भवन वास से।
0: मैम कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: अरे भाभी और ना आसमान मेरा क्यों छोड़ दी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शिवराज मोहन।
1: सर नमस्ते सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैडम आप सुना दो, आतिम ताई का आज बचना है मुश्किल तेरा।
1: कौन सा सर?
0: आतिम ताई आज बचना है मुश्किल तेरा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा

Kutale.

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार

0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: बाबू खान।
0: बाबू खान जी कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी। बिना ही बात मुस्कुराए मेरा मन मेरा।
0: ओके सर, सुना करिएगा ना।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: सर मेरा नाम है कविराम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी आदर्श नगर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: हमें चाहिए सर सूर्या चल जाए तेरी मत वाली चाल से, ये गोटे दाल लहंगा नितनू दमदार डाल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।

तो वक्त हो चुका है 5:16 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
3: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: 69.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ RJ खुशी। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हर सुबह मैं कहती हूँ कि अपने जीवन में अगर थोड़ा सा बदलाव अगर हम हर सुबह लेकर आए तो पूरा दिन कितना बेहतर जा सकता है, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल। और आज भी मैं एक ऑब्जर्वेशन से आपसे बात करने वाली हूँ। भगवत गीता में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण तब बोलना शुरू करते हैं जब अर्जुन उनसे एडवाइस मांगते हैं। यानी कि पहले जब अर्जुन इतने परेशान होते हैं तो श्री कृष्ण अपनी तरफ से बोलना शुरू नहीं करते। अगर हम सोचिए अपनी लाइफ में ये अप्लाई कर दें तो हमारी लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी, है ना? सोच कर देखिए। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ RJ खुशी। 89.6 पे रेडियो DS।

0: देखो वैसे तो सर्दियों में ना किसी का एक्सरसाइज करने का मन करता नहीं है, लेकिन अगर सर्दियों में आपने एक प्राणायाम कर लिया ना तो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं हूँ आरजे खुशी और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जिन लोगों को सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिनके पैर के नीचे के जो तलवे हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं, और जिनको साइनस रहता है या नाक बंद हो जाती है, कफ बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें सर्दियों में एक प्राणायाम करना चाहिए जिसका नाम है सूर्य भेदी। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी बाई नाक को बंद करना है और दाई नाक से सांस लेनी है, बाई से छोड़नी है, बस आपको इतना ही करना है ना आसान। लेकिन आपको पता है ये इतनी इफेक्टिव होती है, आपकी पूरी बॉडी को गर्म कर देती है, और अगर डायबिटीज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना उसको भी ठीक कर देती है। अपना कर देखें और डिफरेंस खुद फील करें। आती हूँ थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

कभी कभी ना सुबह की शुरुआत होती ही बड़ी चिड़चिड़ वाली है, लेकिन अगर हमने अपनी प्रतिक्रिया उसके प्रति बदल दी ना तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। सोच कर देखिए कि अगर आप किसी चीज पे अपनी प्रतिक्रिया ही ना दें तो वो आपको इतना परेशान कर ही नहीं सकती। और सुबह को बेहतर बनाना है तो सुबह की चिक चिक जो होती है ना उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। और अगर घर का हर सदस्य इस चिक चिक से बचने की कोशिश करे और अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करे तो पूरा घर एकदम आराम से शांति से हैप्पीली रह पाएगा, है कि नहीं? तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हमें गुस्सा आए या जब भी हमें चिड़चिड़ होने की कोशिश करे, स्पेशली एकदम सुबह सुबह, तो हम कोशिश करें कि वहां हम अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दें। और आप देखेंगे कि वो बात एकदम छूमंतर हो जाएगी, मतलब कि उस बात का कोई असर आप पर पड़ेगा ही नहीं। अब मुलाकात होगी कल। अभी के लिए यहाँ से निकलती हूँ। मैं हूँ आरजे खुशी। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरतर।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: पसंद।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में मैं आपको हिट फिल्म्स की दिलचस्प बातें बताऊंगी। अगर आप बॉलीवुड फैन भी हैं, तो भी आपने इन बातों पे कभी गौर नहीं किया होगा। चलिए लौट के आऊंगी और बताऊंगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
1: गंगापुर सिटी की धरती।
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

जवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: गंगापुर सिटी की धड़कन 89.6
1: DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। एक बात बताओ, आप आंखें झपकाए बिना रह सकते हो क्या? नहीं ना। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि पी के फिल्म में, जो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, उसमें आमिर खान ने आंखें बिल्कुल भी नहीं झपकाई है। विश्वास नहीं है, वापस जाके देखो। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: गंगापुर सिटी की धड़कन।

0: स्कूल से लेके घर तक रेडियो डियर।
1: बॉलीवुड फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग बात, सिलसिला एक ऐसी अकेली मूवी है जिसमें शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के बड़े भाई का रोल निभाया है। बाकी जितनी भी इनकी फिल्म्स हैं जिसमें ये सिबलिंग बने हैं, सभी में अमिताभ बच्चन वो हैं जिन्होंने बड़े भाई का रोल निभाया है। चलिए सुनते हैं ऐसी ही कुछ फिल्म्स के खूबसूरत गीत। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: गंगापुर सिटी के घर पर

0: जाने भी दो।
1: क्यों भूखे हो तुम?
0: नहीं भूखे हैं।
1: हमें खाओगे?
0: नहीं खाएंगे।
1: तो फिर भागो भागो।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। वक्त तो चला है सफरनामे का। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिवंगत प्रदीप कुमार के बारे में। दिवंगत प्रदीप कुमार का नाम आते ही जहन में शाही अंदाज और नवाबी नजाकत वाले नायक की इमेज बन जाती है। मुगल पीरियड को दर्शाने वाले फिल्मों के हीरो के रूप में भी फिल्मकारों की पहली पसंद हुआ करते थे। लंबा कद, गरिमामय मुस्कान, शाही चाल और धीर गंभीर आवाज के वो धनी थे। प्रदीप कुमार की पॉपुलैरिटी में उनकी फिल्मों के गीत संगीत का अहम योगदान रहा है। आज हम आपको सुनाएंगे उन पर फिल्माए गए गीतों को। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ फिल्मिस्तान की सुपरहिट फिल्म नागिन के सभी एक दर्जन गीत अपने दौर में लोकप्रियता के पायदान पर सबसे ऊपर रहे। हेमंत कुमार का गाया ऐसा ही एक गीत है तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। प्रदीप कुमार यह गीत नदी किनारे नहाती सुंदरी वैजयंती माला के लिए गा रहे हैं। अनारकली और नागिन जैसी कई फिल्मों में हेमंत कुमार प्रदीप कुमार की आवाज बने, जबकि बाद में उनकी जगह मोहम्मद रफी साहब ने ली। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। फिल्म आरती में दो खूबसूरत गीत प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माए गए हैं। एक रफी जी का सोलो अब क्या मिसाल दूं और रफी जी और लता मंगेशकर जी का युगल गीत आपने याद दिलाया। अब क्या मिसाल दूं की शुरुआत से ही हमारा ध्यान रफी की गुनगुनाहट पर अटक कर रह जाता है। बेहतरीन शायरी का बखूबी साथ देता है मीना कुमारी का लज्जा से भरा मुखड़ा। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। अब जो गीत आपको हम सुनाने वाले हैं वो रोशन के संगीत वाले इस गीत के शब्द बेहद खूबसूरती से रचे गए हैं। पांव छू लेने दो, फूलों को इनायत होगी। शहजादा खुर्रम बने प्रदीप कुमार की मोहब्बत के इजहार के लिए रफी की आवाज बिल्कुल फिट साबित होती है। खूबसूरत बीना रॉय लता की शहद भरी आवाज में इस अंदाज में जवाब देती है, हमको डर है कि ये तौहीन मोहब्बत होगी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ अब आपको सुनाने जा रही हूँ फिल्म बहू बेगम का वो गीत हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। आरती, चित्रलेखा और भीगी रात के बाद ये चौथा और आखिरी मौका था जब प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार का ट्रायंगल फिल्मी पर्दे पर दिखाई दिया। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों की तकदीर चाहे जो रही हो, लेकिन इनमें से हर फिल्म के गाने मिसाल बन गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

हर चीज के पीछे एक ही रीजन, क्या? फोन। ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो डीएसटी 9.6। चाहे कमर में दर्द हो, चाहे चलते चलते आपके पैरों में मोच आ जाए, चाहे आप साइकिल से गिर जाओ, चाहे आपसे जिम छूट जाए, चाहे आपका बस छूट जाए, कुछ भी हो, मम्मी एक ही रीजन देती है कि ये तो फोन चलाने की वजह से ही हुआ है। और ऐसी रीजनिंग आज के जमाने से नहीं है, हजारों साल पहले जब रोमन एम्पायर हुआ करता था, तब चाहे इंसान को कुछ भी जहर लग जाए, चाहे वो सांप ने काटा हो, चाहे वो खाने में मिल जाए, उस जमाने में लोग सिर्फ एक ही चीज यूज करते थे एज ए जहर का इलाज, और वो था नींबू यानी लेमन। पर फिलहाल आपके कानों का इलाज गाने। तभी मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ बैक टू बैक अमेजिंग गाने रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। कई बार इतिहास की चीजें जानने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार क्यों जाना मैंने ये, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और एक जमाने में लोग केचप यानी टमेटो सॉस केचप को बेचते थे एज ए मेडिसिन, दवाई के रूप में बिकता था केचप। हाय हाय हाय हाय, इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपके कानों से खून निकल रहा हो, तो फिर रुक जाओ, मैं आपके कानों का इलाज करता हूँ। बैक टू बैक कुछ अमेजिंग गाने आपके लिए प्ले करने वाला हूँ 89.6 रेडियो डीएस पे।
1: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो डीएस।

देखो, अगर आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन अगर कोई भी है तो फिर ये खबर आपके लिए। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और टिल डेट 2024 चालू हो चुका है। और कौन सी खबर है भैया? हमारे बगल में, पड़ोस में जो यूएस है, यूएस का प्रेसिडेंट आज तक जो भी बना है वो कभी भी अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे नहीं थे। यानी किसी का बड़ा भाई था, किसी का छोटा, किसी की बड़ी बहन, किसी की छोटी बहन। अगर आप यूएस जाके वहाँ के प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहे हो तो फिर आज का शो मेरा यही तक था। फिलहाल टाइम टू गो बैक टू बैक अमेजिंग कुछ गाने आपके लिए प्ले करके जा रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएसपी।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो टीएस गंगापुर सिटी के तड़का में आपका रेडियो दोस्त आकाश। और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।